मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ।

0: शेरगढ़ मरवावी ज्यादा और मैनी चौक कोठा या हेड ऑफिस के नंबर 09280 कर सकते हैं।
1: हो फमीना बाजार दुबई की दशारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची दुबई और दशारजा टोले वैरायटी मौजूद था
2: नुदा सिवाया का ना
1: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 09382732 65।
3: टोपी मेडिकल केयर सेंटर कमजे चिप मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आन द अवाम द खिदमत लपारा मौजूद हुई चिपकी डॉक्टर आमिर असलम कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट द इतवार परवज लस बजो ना तरमा खाम सलोर बजो कोरे लेडी डॉक्टर फरीहा मुश्ताक फिजियोथेरापिस्ट द पीर न तर जुमेरात रस कोरे सहर नहो बजो ना तरमाजीगर सलोर बजो कोरे डॉक्टर विकास अहमद कंसल्टेंट एंड साइकेट्रिस्ट द इतवार परवज यवोलस बजो ना तरमासपिन ब्रे बजो कोरे गायनोकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर इकरा रफीक माहिर अमराज जच्चा बच्चा द पीर नतर हफ्ते पूरे माजीगर द सलूर बजो न तरमास्कोतन अतो बजो पूरे बाओपी डिकवी जमू सहूलियात ती 24 घंटे सर्विस लेबर रूम अल्ट्रासाउंड इको ईसीजी पेशेंट मेडिकल वार्ड जनरेटर और नो टूल जरूरी सहूलियात मौजूद थी नो पता याद साते और तशरीफ रावड़े टोपी मेडिकल केयर सेंटर आयास प्लाजा जड़ा में लेलार टोपी मोबाइल नंबर दे 0335-666-2878 द्वैम नंबर दे 0336-444-5888।

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी, खो कुचरता द दग जवानको प वक्त बाने गम उनकलेशी, न प रारवान वक्त की दग जवान की सासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी। द ऑयली स्किन औ द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुवे। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर रजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई। और ये वाजिदा ना द दग दानो चुकम दागो नदी अगर हम पर मुकम्मल तो गबाने खत्म होगी। पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल सल्सिलिक एसिड ट्री ट्री अंडा माइसिन कुमची और देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी। और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो के दनन दनन सासु दाने और द दानो दागुना तो गबानी खत्म ही। नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई। द मजद पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk।
3: ये है एक दुनिया की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है। द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा, एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजामे तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। और अपने बच्चों के कामयानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 0938-280103 पर राबता कर सकते हैं।
4: माँ ویلې مال د شارجه نه کالی راوړه.
5: زه اوس تا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
4: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دبئی او د شارجه ټوله ورایټي موجود ده.
5: نو دا څه وایې کنه؟
4: شارجه جولرز. پرپرایټر زی برادرز، فون 0938273265.
6: ټوپی میډیکل کیئر سنټر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران د عوام د خدمت لپاره موجود وي. چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجی

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो गमी जिंदगी तुझे क्या कहूँ बस जिंदगी ही तुम हाल है जहाँ मौत इतनी जहाँ मौत इतनी आसान थी वहीं जी लिया अरे यही तो कमाल है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या हाल है कैसे आप ठीक हैं खैरियत से हैं यकीनन ठीक ठाक होंगे खैर खैरियत से होंगे और जहां जिधर भी होंगे अच्छे वन फर्स्ट क्लास मजों के साथ अपनी जिंदगी या फिर अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे बताइएगा क्या हालात वाकयात हैं क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं। यकीनन के इरादे तो आप लोगों के अच्छे ही होंगे और कहां कहां भी मेरी आवाज सुनी जा रही है ताहिर जमान की आवाज सुनी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अगेन अगेन अगेन एंड अगेन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरे नहायत ही मोअज्ज़ज़ मोहतरम और दिलों के करीब सुनने वाले सामीन उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी मौजूद होंगे खैर खैरियत से होंगे सुकून और एतमान के साथ होंगे अपनी अपनी जिंदगी के खूबसूरत सफर में आगे बढ़ रहे होंगे और इसी के साथ साथ कोई घर की चहल पहल में मसरूफ होगा कोई सफर में होगा कोई दोस्तों के साथ बैठा होगा और कोई तन्हाई के इन लम्हों में इस आवाज को सुन रहा होगा जी जो सिर्फ आप लोगों के लिए बोल रही है आप लोगों के लिए चल रही है। आप सुन रहे हैं एफएम 94 रेडियो दिलवर सोहाबी जी एफएम दिलवर सोहाबी शुक्रिया मनन मेहरबान शुक्र कि आप हमारे साथ साथ हैं एफएम 94 रेडियो दिलवर सोहाबी के साथ हैं। आज की इस खूबसूरत शब में हम बात करेंगे जी जिंदगी के उन पहलुओं की जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं मगर हकीकत में हमारी पूरी सोच हमारा मिजाज और हमारा कल यही बनाते हैं। जनाब आज हफ्ते की रात है एक ऐसा लम्हा जब दिन की थकन पीछे रह जाती है और इंसान अपने आने वाले कल की तरफ उम्मीद के साथ देखने लगता है और कल है एतवार यानी एक छोटा सा वक्फा जी एक छोटी सी सांस एक ऐसा दिन जो हमें जो है ना खुद से दोबारा मिलने का मौका देते हैं। जिंदगी वाकई जो है ना बहुत खूबसूरत है बस शर्त यह है कि हम इससे देखने का जाविया दुरुस्त रखें बेहतरीन रखें। कभी कभी हम बहुत कुछ जो है ना बहुत कुछ होते हुए भी खुश नहीं होते और कभी कभी बहुत कम पर भी यकीन कर लेते हैं या बहुत कम में भी मुकम्मल एतमान महसूस करते हैं। लिसनर्स यही जिंदगी का असल फलसफा है। सो आप कहां कहां मेरी आवाज सुन रहे हैं ताहिर जमान की आवाज कहां किधर सुनी जा रही है इस हवाले से मुझे जरा बतलाइएगा आंसर दीजिएगा। तमाम सुनने वालों को जितने भी छोटे बड़े सामीन मेरी आवाज सुन रहे हैं सुनने वाले मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको ताहिर जमान वेलकम कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम 94 रेडियो दिलबर सोहाबी से। एंड दिन कैसा गुजरा हालात आप लोगों के कैसे गुजरे और ये पूरा एक हफ्ता आप लोगों का किस तरह कैसे गुजरा इस हवाले से जरूर बताइएगा। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे लिसनर्स के जो मौजू आज से पहले रेडियो की दुनिया में या रेडियो के मीडियम में जो है ना किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया या फिर रेडियो की दुनिया में जो है ना कोई भी नहीं लेके आया क्योंकि इंसान की असल जिंदगी वो नहीं होती जो वो बोलता है असल जिंदगी वो होती है वो मतलब जो खामोशी में सोचता है खामोशी में मतलब जो है ना जीता है और फिर उन्हीं सोचों के मुताबिक अपने कल को बदल लेता है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मतलब जो है ना मोड़ पर खामोश फैसले करते हैं कोई रिश्ता बदल लेता है कोई रास्ता बदल लेता है कोई ख्वाब अपनी शक्ल बदल लेते हैं और हम समझते हैं कि शायद जो है ना ये सब अचानक हुआ है मगर हकीकत ये होती है हकीकत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हकीकत ये होती है कि ये सब पहले से हमारे अंदर शुरू हो चुका होता है सर बहुत पहले से मौजूद होता है। अपने होने का एहसास जरूर दिलवाएगा जरूर बताइएगा कि आप हमारे साथ साथ 94 रेडियो दिलबर सोहाबी की ये नशरियात सुन रहे हैं। आप लोगों के मैसेजेस आप लोगों की कॉल्स और आप लोगों का फीडबैक आप लोगों के मोहब्बत नामे ये भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे प्रोग्राम में हम इन्हें भी शामिल करेंगे। एक ट्रैक सुनते हैं जी ट्रैक के बाद वापस आते हैं जेई की मत सुनते रहेगा और अपना सर धुनते रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम 94 रेडियो दिलबर सोहाबी 94 के पैनल से ताहिर की आवाज सुन रहे हैं आप

ऑलराइट जनाब, योजलबियात आस्था हरगले जी एक मरतबा फिर आप लोगों को वेलकम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम 94 रेडियो दिलवर 24 से। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि आप पर भी मतलब जो है ना ये चीज अच्छी लगती है या आपको भी ये चीज प्यारी लगती है कि मतलब खड़कुरुना कैसे कहते हैं जी, खड़कुरुना मेरे ख्याल से जो मिट्टी के कच्चा और कच्चे घर होते हैं, कच्चे घरों को जो है ना खड़कुरुना कहते हैं ना। अच्छा जनाब, आवाज और साउंड के हवाले से बात करें तो अगर नई मशीन दुरुस्त तरीके से प्रॉपरली पता नहीं जो है ना इंस्टॉल हुई है ये नहीं हुई, इस साउंड के हवाले से मुझे बताइएगा, आवाज के हवाले से बताइएगा, और साथ साथ मुबारकबाद भी बनती है भाई, मिठाई आप लोगों ने खिलानी है या मैं मतलब आप लोगों को मिठाई खिलाऊंगा।

मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे लिसन्स के मैं आप लोगों के लिए एक पाकिस्तानी नंबर प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। इसी के साथ साथ ये है कि मैं इस मौजू के हवाले से बात करता हूँ।

0: एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ, एक बार फिर आप लोगों को, आप दोस्तों को वेलकम कहता हूँ।
1: तेरी वफा का सोचता हूँ, खा तो था साथ का वादा पर।
0: मेरे नहायत ही मुहज्जज मोहतरम और दिलों के करीब बसने वाले सामीन, उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, A1 होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे।
1: सवाल मुझे ही तोड़ते।
0: आज का मौजू एक ऐसे एहसास के बारे में है जो हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी वक्त जरूर पैदा होता है। जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने बात की कि खामोशी के अंदर छुपे हुए फैसले और बदलती सोच। मेरे दोस्तों, खामोशी सिर्फ जो है ना आवाज की गैर मौजूदगी नहीं होती, खामोशी एक मुकम्मल जबान होती है, एक ऐसी जबान जो बोलती नहीं मगर सब कुछ कह देती है। इंसान जब बोलना छोड़ देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान के या उसके अंदर कुछ नहीं चल रहा, बल्कि असल में उसके अंदर सब कुछ बहुत ज्यादा चल रहा होता है। सोचें, एहसास, यादें, फैसले और सब कुछ एक साथ मतलब चल रहा होता है। खामोशी के अंदर इंसान अक्सर वो फैसले करता है जो वो लफ्जों में नहीं कह पाता। ये फैसले कभी जज्बात की बुनियाद पर होते हैं, कभी तजर्बात की बुनियाद पर होते हैं और कभी सिर्फ थकन की बुनियाद पर। ये वो फैसले होते हैं जो बाहर की दुनिया को नजर नहीं आते मगर इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। अब जरा इस पहलू को आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि खामोश इंसान हमेशा कमजोर नहीं होता, बाज़ुकात वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो अपनी लड़ाई दूसरों के सामने नहीं लड़ता बल्कि अपने अंदर लड़ता है। वो अपने सवालों के जवाब भी खुद देता है और अपने जख्मों को भी खुद संभालता है, पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। अब जरा इस पहलू को आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि खामोश इंसान हमेशा कमजोर नहीं होता, बाज़ुकात वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो अपनी लड़ाई दूसरों के सामने नहीं लड़ता बल्कि अपने अंदर लड़ता है। वो अपने सवालों के जवाब भी खुद देता है और अपने जख्मों को

जन्म लेते हैं जब इंसान बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, और सोच एक ऐसा दरिया है जिसकी कोई हद नहीं है। एक सोच दूसरी सोच को जन्म देती है, फिर तीसरी, फिर इंसान एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां वो खुद भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाता। मैं लिसनर्स यहां ये बात कहना चाहूंगा कि ये वो लम्हे होते हैं जहां इंसान बदलना शुरू हो जाता है, बाहर से नहीं अंदर से उसकी सोच बदलती है, उसका अंदाज बदलता है, उसकी तरजीहात बदलती हैं, और बाज़ औक़ात का रवैया भी बदल जाता है। लेकिन ये तब्दीली हम बरी नहीं होती, कभी ये तब्दीली इंसान को ज्यादा समझदार बना देती है, कभी ज्यादा मोहतात, कभी ज्यादा हकीकत पसंद। खामोशी इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे एक नए रास्ते की तरफ लेके चलती है या नई सिमत देती है। अब जरा एक और हकीकत पर गौर कीजिएगा आपके। हम अक्सर जो है ना ये समझते हैं ना कि जो शख्स कम बोलता है वो कुछ नहीं सोच रहा होता, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है जी। हकीकत इससे बिल्कुल चेंज है। जो कम बोलता है वो ज्यादा महसूस करता है, और जो ज्यादा महसूस करता है वो ज्यादा गहराई में चल जाता है। यही गहराई इंसान को बदल देती है। वो पुरानी बातों को नए जाविये से देखने लगता है, वो लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से समझने लगता है, और वो अपनी जिंदगी के फैसलों को ज्यादा संजीदगी से लेने लगता है। और यहां ये बात मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, क्योंकि खामोशी में जो फैसले होते हैं वो शोर में नहीं होते, वो दिल के अंदर होते हैं। मेरे दोस्तों, जिंदगी का एक और बहुत बड़ा सबक यह है कि हर खामोश इंसान उदास नहीं होता, और हर बात करने वाला खुश भी नहीं होता। असल हकीकत अंदर की दुनिया में छुपी होती है, बाहर की दुनिया में नहीं होती। खामोशी के फैसले अक्सर देर पर होते हैं कि क्योंकि जो है ना वो जज्बात के शोर में नहीं होते, बल्कि वो सोच के सुकून में होते हैं ना, सोच के सुकून में होते हैं। और यही फैसले इंसान की जिंदगी का रुख बदल देते हैं। आखिर में मेरे सामीन, मेरे स्वीट लिसनर्स, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा है, ऐसा वक्त है, ऐसा कोई लम्हा है जहां आप खामोश हैं, तो इसे कमजोरी ना समझिएगा। ये खामोशी आपके अंदर एक नई सोच को जन्म दे रही है, एक नया फैसला बना रही है, और शायद एक नया रास्ता भी आप लोगों के लिए खोल रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइज, आज का जो हमारा मौजू सुखन है वो खामोशी के हवाले से है। खामोशी के अंदर छुपे हुए फैसले और बदलती सोच। इस मौजू सुखन पे आप जरूर आइएगा, आप शामिल होइएगा। मुझे यानी कि ताहिर जमान को अच्छा लगेगा आप आएंगे, शामिल होंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मेरा ये नंबर अपने पास आप लिख लेंजे, 0307 27006 66, 0307 27006, 0307 27006 66। अस्सलाम वालेकुम भैया सिंगे, प्रोग्राम मौसम जबरदस्त है, ओके दे हरम जांच कमदन मुंगसर प्रोग्राम के शामिल शो ठोपा ही ना वही अगर सॉन्ग प्ले का मातिकर लकस्ता बंगली टस टस टस मरवा रशवा हाय हाय हाय हाय खुदाया अगजमा करे छे सुख में दड़ खुरज कमदन ओते दे मना ना जी शुक्रिया दा चाम मैसेज करे दे नेक्स्ट द सुख दी मामू तासो द मोहब्बत मुबारक के समय खुले खबर के वही तासो खज मना ना शुक्रिया देर मना ना मन हा दा रुस्तम ना मन हा शुक्रिया जी तास शामिल शेजे। मोहब्बत में जो इंसान नाकाम होकर खामोश होता है तो फिर वही खामोशी एक बहुत बड़ा तूफान लाती है। क्या ये सच है? प्लीज इस पे बात करें। फरियाल का मैसेज आया जी, फरियाल ने ये मैसेज किए जी, और फरियाल के इस मैसेज पे, इस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि जब कोई इंसान मोहब्बत में

0: मैं इस समझ के हवाले से यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि इसी बदलती हुई सोच के साथ इंसान अपनी जिंदगी के फैसलों को भी पहले से ज्यादा संजीदगी और गहराई के साथ वो जल्दबाजी में फैसला करने के बजाय सोचने समझने और हालात को परखने का अमल अपनाता है। यही वो रवैया या मतलब यही रवैया उसे गलतियों से बचाता है और जिंदगी में तवाज़न पैदा कर देता है और बाज़ औक़ात ये तब्दीली इंसान को मजबूत बना देती है क्योंकि वो अपने अंदर बर्दाश्त तहमल और समझदारी पैदा कर लेते हैं और बाज़ औक़ात यही तब्दीली उसे ज्यादा मोहतात भी बना देती है जहाँ वो हर कदम हर सोच या मतलब हर एक कदम को वो सोच समझ कर उठाता है ताकि दोबारा वही दर्द ना दोहराया जाए और बाज़ औक़ात यही तब्दीली इंसान को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देती है और उसकी सोच उसका अंदाज उसका रवैया उसकी तरजीहात सब कुछ एक नए रुख में डल जाते हैं नए रुख की तरफ चल जाते हैं। 0307 27006 66
1: इश्क में खुद को खो बैठी दीवानी सी मैं हो
0: तेरे इश्क में खुद को खो बैठी दीवानी सी
1: मुझ पे जो बीती
0: और क्या खाक बताऊं।

सतराम जी सलाम वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। ये कैसा सलाम आप? वही खुदा पाक का दुमरा लगे गम दोनों दस गड़बड़ मैसेज न कहो चो अल्लाह बंद सपा अनंगो की द हमजा।

एक खामोश रात सैकड़ों अनकही बातों का बोझ उठाकर गुजर जाती है। जिंदगी का अजीब सुकून ये भी है कि मतलब इस हवाले से मैं यहाँ पे लेसन कहना चाहता हूँ कि चलिए सुकून को छोड़ें, बल्कि असूल के हवाले से बात कर लेते हैं। जिंदगी एक अजीब तरह का असूल ये भी है लिसनर्स, कि वक्त हर जख्म पर मरहम तो रख देते हैं, मगर जो है ना कुछ निशानात ऐसे छोड़ जाते हैं जो इंसान को हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि उसने कभी किसी को दिल की गहराइयों से चाहा था। इसलिए कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात बिछड़ कर भी इंसान पूरी जिंदगी मोहब्बत को निभाता रहता है। सामीन, अब इजाजत का वक्त करीब आन पहुंचा है। दुआ है कि आपकी जिंदगियों में खुशियां हों, दिलों में सुकून हो, रिश्तों में एतमाद हो और आंखों में उम्मीद बाकी रहे। और आप जाते जाते आप दोस्तों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर किस्मत ने साथ दिया, अगर वक्त ने मोहलत दी, अगर इन बेवफा सांसों ने वफा की, तो फिर इंशाल्लाह इसी आवाज, इसी एहसास और इसी मोहब्बत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेहजबान को इजाजत दीजिएगा, अपने मेहजबान ताहिर जमान को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों की कदर कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात एक लम्हा गुजर जाता है मगर वही लम्हा पूरी जिंदगी वापस नहीं आता। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, जहाँ रहें, जिधर रहें, खुश रहें। तल्दी पाकिस्तान, यानी कि हमेशा रहे पाकिस्तान। द अल्लाह एंड अल्लाह द अल्लाह पामान।